बड़ी बात, इनकी मंशा है फादी, इनसाइट पूरी करे संचार साथी, दिन खाए पूरा वो लंचार चाती लाला कंचार, फ्लो की इनकी झूम कर विदाई हो, अश के सबूत तो समुंदर दिखाई हो, और शाम में सफल अगर तुम पर बिताई हो, पर टू मैनी गूगल सर्चिंग फॉर दीज बॉल्स, माइट इवन हिट इट अगर सुंदर पिचाई हो। My friend's name is Bablu, Bablu ball so hard like a LBW, और Bablu के तब